गुड मॉर्निंग छत्रपती संभाजीनगर. उठा उठा, सकाळ झाली आणि नवीन आठवड्याची सुरुवात करायची ही वेळ आलेली आहे. आणि तुम्ही ट्यून केले एमजीएम 90.8 एफएम. आरजे अदनान तुमच्या सोबत आहे आणि घड्याळ एक्झॅक्टली 7:12 ही वेळ झालेली आहे. मंडे मॉर्निंग आहे, मॉन्सून सीझन आहे, एकदम माहोल थंडा थंडा है. क्योंकि भाई गर्मी झेलने के बाद जब बरसात का मौसम शुरू होता है, भले इस साल लेट हो गया, एक ही सुकून लेकर आ ही जाता है. जैसे कि मंडे किसी के लिए सुकून लेकर आता है तो किसी के लिए फ्रस्ट्रेशन और वर्कलोड लेकर आता है. खैर, हर किसी का एक अपना अपना ओपिनियन होता है. तो यार एक बात याद रखिएगा आज के थॉट ऑफ द डे में कि मंडे सिर्फ हफ्ते की शुरुआत नहीं है, नए मौके की भी शुरुआत होती है. आज का दिन अपने सपनों के नाम कीजिएगा और अपने सपने मुकम्मल करने के लिए मेहनत कीजिएगा, एक नई स्टार्ट कीजिएगा. क्योंकि हर मंडे एक ब्लैंक पेज की तरह होता है, आपकी मेहनत ही उसकी कहानी लिखती है. ये बात याद रखिएगा और आज के मंडे का आगाज कीजिएगा बड़े मुस्कान के साथ. वो मुस्कान नहीं जिसने आपको छोड़ दिया, आपकी अपनी चेहरे वाली मुस्कान मैं कह रहा हूँ, वो बात याद रखिए. बाकी तो मुस्कुराते रहिए, और भी बहुत सारी बातें होगी आज के शो में, लेकिन कुछ ही देर में. तब

0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजी 90.8 FM।
1: एक बार एक किसान के पास दो बीज थे। पहला बीज बोला, मैं जमीन के अंदर नहीं जाऊंगा, अंधेरा होगा, मुश्किल होगी और मुझे डर लगता है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। और दूसरा बीज बोला, अगर मुझे पेड़ बनना है तो मुझे ये सफर तय करना ही पड़ेगा। कुछ हफ्तों के बाद जो बीज डर गया था वो अब भी बीज ही बना रह गया, और जो हिम्मत करके मिट्टी के अंदर चला गया वो एक हरा भरा पौधा बन गया। जिंदगी भी कुछ ऐसी होती है दोस्तों, ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। अगर हम हर मंडे को सिर्फ एक और वर्किंग डे समझेंगे तो शायद वही की वही रह जाएंगे, लेकिन इसको अगर एक नई शुरुआत, एक नया मौका समझेंगे तो हर हफ्ता हमें अपनी मंजिल की ओर करीब ले जाएगा। तो इस मंडे एक वादा कीजिए, डर से नहीं अपने सपनों से फैसला लीजिए, क्योंकि छोटी सी शुरुआत ही बड़े बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। हैप्पी मंडे। आज का दिन सिर्फ कैलेंडर का एक दिन नहीं है, बल्कि आपकी अगली सक्सेस स्टोरी का पहला पेज भी हो सकता है।
0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजी 90.8 FM।

0: टॉक टू समवन किसी से बात करो अक्सर कहा जाता है, लेकिन कितना इफेक्टिव है? You are listening MGM 90.8 FM and let's talk about mental health. अपने साथ है डॉक्टर मानसी करजगावकर मैम, HOD of MGM University's Psychology Department. So मैम, overthinking पर हम बात कर रहे हैं और अक्सर ऐसा कहा जाता है कि यार तुम डायरी लिखा करो या किसी से बात किया करो, इससे फर्क पड़ेगा, तुम्हारी overthinking कम होगी. तो क्या यह सच है, इस बारे में बताइए.
1: बिल्कुल कम होगा. तो जब हम लिखते हैं या हम बोलते हैं या हम बात करते हैं, तो बेसिकली हम हमारा जो प्रोसेसिंग होता है ब्रेन का, फ्रॉम इमोशनल ब्रेन टू थिंकिंग ब्रेन, ये शिफ्ट करते हैं. जब हम नॉनस्टॉप है ना अंदर ही अंदर बोलते हैं, खाई जाती है कोई बात, तो हमारा वो इमोशनल ब्रेन काम करता होता है. और जैसे ही हमको लिखना है या शेयर करना है, तो फिर उसमें इन्वॉल्व होती है हमारी लैंग्वेज, ब्रेन के हिस्से, है ना. फिर हम लिखते हैं या बोलते हैं तो थोड़ा थिंकिंग बेस्ड हो जाता है, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड हो जाता है. इसीलिए हम बोलते हैं कि कभी भी बुरा लगे, कुछ लगे, तो या तो लिख लो या किसी से जाके बात कर लो. और हमारी ज़िंदगी में भरोसेमंद लोग होना हमारे आसपास बहुत ज़रूरी हो गया है. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमारे आसपास ट्रस्टवर्दी पीपल हो, है ना, जो हमारा पर्सपेक्टिव को थोड़ा करेक्ट कर सके. जब हम कुछ शेयर कर रहे हों, हमको जज ना कर सके. तो मेरा ये सजेशन है सबसे कि ह्यूमन कनेक्शन बहुत पावरफुल चीज़ है टू रेगुलेट आवर नर्वस सिस्टम. तो प्लीज़ बिल्ड ट्रस्टवर्दी स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कनेक्शंस.
0: तो एग्जैक्टली मैम ने जो कहा, ये फॉलो कीजिएगा और आप डायरी भी लिख सकते हो. आपके माइंड के अंदर जो कुछ सवाल आ रहे हैं, जितने भवंडर मचे हैं ख्यालों के, वो आप नोट डाउन कीजिए या किसी से बात कीजिए और देखिए मन हल्का जरूर होगा और बेफिक्री के साथ जिंदगी एंजॉय करते रहिएगा. स्टे ट्यून्ड.

फरमाइश फरमाइश और फरमाइश, आपकी फरमाइश पूरी करना मेरा काम है, मेरा अधिकार है। आप सुन रहे हो आरजे अदनान के साथ, यानी कि मेरे साथ MGM 90.8 FM। और इस वक्त ना तो हम आपकी गाने की फरमाइश पूरी करते हैं, तो आज हमारे पास गाने की फरमाइश आई है पवन काले जी की तरफ से इस गाने के लिए।

फिल्म मेरा गांव मेरा देश जो कि 1971 में आई थी, इस फिल्म से ये गाना है मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। अपने आप में ना तो ये गाना एक अलग ही एहसास समेटता है और इस गाने को गाया था लता मंगेशकर जी ने अपनी जादुई आवाज में। एंड यू नो व्हाट, इस गाने के बोल मशहूर गीतकार आनंद बख्शी साहब की कलम से निकले थे और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, जो कि बहुत मशहूर जोड़ी थी। और ये गाना फिल्म के उस स्पेशल मोमेंट पर आता है जब एक्ट्रेस ना तो कश्मकश में होती है कि लीड रोल में होते हैं धर्मेंद्र जी, उनको क्या कहा जाए, उनको कैसे बचाया जाए इन गुंडों की चाल से। तो आइए फिर दिल थाम के सुनिएगा खूबसूरत ये बेहतरीन सा गाना मेरा गांव मेरा देश इस फिल्म से आपकी फरमाइश पर। और हाँ, आपकी भी अगर कुछ फरमाइश हो तो आप हमें व्हाट्सएप करके बता सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर 9359320080।

0: Indian University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join NGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: Nairashya, Becheni, Zopichi Samasya, Bheeti, Chitchit, Ata Manasik Azar, Lapoichi Nahit, Upchar Gya, Samadhan Shodha.
2: Dr. Amol Patrikar, Manas Upchar Vavesan Mukti Tadnya.
1: Satat Chichinta, Ati Vichar Karne, Bheeti Vatne, Dasti Basne, Bhasone, Ghabarne, Sonshe Karne, Shankayene, Chitchit Bana, Ekas Ghosta Puna Puna Karne, Mantra Chale Pana, Vyasan Dita, Lahan Mulan Madil, Vrudar Madil, Manasik Lakshane, Vaivahik Samasya, Ya Sarva Samasya, Anwar Upchar, Ani Samadhan. Samupadeshan Vyasan Mukti, Purusho, Mahila, Antar Rugna, Suvidha Uplabdha, Aazaz Bhet Diya.
2: Utkarsh Clinic, Harsul T Point, HP Petrol Pump, Shezari, Zargao Road, Chhatrapati, Sambhajinagar, Antar Rugna Vibhag, Disha Hospital, Samupadeshan Counseling Center, Sant Tukaram Natyagrahacha Zavar, Chhatrapati, Sambhajinagar. Contact on 888-99-2688.
1: तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी एमजे युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्यूचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी
3: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी बीटेक इन डेटा सायन्स
1: पीजी एमटेक इन एआय अँड एमएल एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये पीएचडी करण्याची संधी किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक
3: ऍडमिशन्स ओपन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404942
1: 9. क्या आप इंग्लिश फ्रेंच जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं या फिर अरेबिक संस्कृत मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं
2: तो एमजीएम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है बीए ऑनर्स इन इंग्लिश एमए इंग्लिश एमए मराठी एमए हिंदी एमए उर्दू एमए संस्कृत पीजी डिप्लोमा इन अरेबिक डिप्लोमा प्रोग्राम्स क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश संस्कृत फ्रेंच जर्मन उर्दू जापानीज पर्शियन एंड ट्रांसलेशन
1: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515

अगर आपको आपकी जान प्यारी है तो गाड़ी आहिस्ता से चलाइएगा, क्योंकि अपने रास्ते इतने खूबसूरत है, क्या ही बोले यार, माशाल्लाह। यू आर लिस्निंग MGM 90.8 FM, RJ अदनार आपके साथ है और मौसम मस्ताना है और गाड़ी स्लिप होता ना काय मनवाता। देखो यार, बरसात का मौसम है, सब तरफ ना तो बरसात आ रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है, लेकिन सड़कें अपनी बहुत गीली गीली आपको नजर आ रही है। स्पेशली अगर आप अपने जालना रोड के ऊपर जाओगे ना, मोंडा नाका ब्रिज के नीचे से आप अगर गुजर रहे हो तो वहाँ का रास्ते की हालत अपनी नजरों के सामने है। एक साइड का रास्ता पूरा खराब हो चुका है एंड उसके ऊपर पैच वर्क किया गया था, लेकिन इतना खराब पैच वर्क किया है कि गाड़ी चलाते वक्त इस बरसात के मौसम में अक्सर दिन में से 4 से 5 टू व्हीलर वहाँ पर स्लिप हो ही रहे है। और इसी के साथ क्रांति चौक ब्रिज के नीचे, जैसे हम ना तो दूर डेरी से होते हुए क्रांति चौक जाते हैं ना, तो बीच में एक बड़ा गड्ढा आपको नजर आएगा, तो वहाँ से गुजरते हुए गाड़ी आहिस्ता से चलाइएगा। अगर उस गड्ढे में आपकी गाड़ी चली गई तो फंस जाओगे और आप भी गिर जाओगे। और जैसे ही ना आप क्रांति चौक के एग्जैक्टली नीचे आते हो ना, जहाँ पर सिग्नल होता है, वहाँ पर भी गड्ढे हो गए थे, तो प्रशासन ने क्या किया, उसके ऊपर खड़ी होती ना बारीक बारीक खड़ी जला मनता चुना खड़ी कहते ऐसा मनता, तर ती टाकले लिए आणि ती खड़ी पावसामुळे पूर्ण निघालीये आणि पूर्ण रस्त्यावर खड़ी पसरलेली आहे आणि त्यामुळे सुद्धा गाड़ी स्लिप होण्याचे प्रमाण वाढताय और इससे नुकसान आम आदमी का होता है। तो बी सेफ बी केयरफुल, क्योंकि प्रशासन कब ये काम ठीक करवाएगा और कब रास्ते ठीक हो गए ये तो मुझे भी नहीं पता, और प्रशासन को पता होता तो वो भी बताते, वरना इतने बड़े बड़े खड्डे अपने यानी कि गड्ढे अपने शहर में हो चुके हैं। वो गड्ढे नहीं है भाई, एक बात याद रखिएगा, वो है स्पीड ब्रेकर आपकी गाड़ी की स्पीड कम करने के लिए। अगर गड्ढे होते वो प्रशासन की नजरों से तो वो गड्ढे भर दिए होते, लेकिन गड्ढे नहीं है ना, स्पीड ब्रेकर है, ऐसा हम समझ सकते हैं दिल के तसल्ली के लिए। गाड़ी सेफ तरीके से चलाइए, आराम से चलाइए और सुनते रहिए RJ अदनान के साथ।

खड़ी लेकिन वहाँ कोई और थी इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम हाँ देखिए साहिब वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी मैं इन पे मरता हूँ

इनको भी है मेरा खुमार, इनको भी है इनके लिए है मोहतरम, छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए साहिबो, वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी, मैं इंत मरता हूँ।

मुझ पर यकीन अब कम सही मैं सादा दिल मुझे दिम सही इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुद।

0: आपकी टू व्हीलर और फोर व्हीलर पर नंबर प्लेट कौन सी है, नई वाली या पुरानी वाली? याद तो है ना कुछ? यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, आरजे अदनान आपके साथ है। और एक नया रूल आया है कि अब हर एक गाड़ियों पर ना तो HSRP नंबर प्लेट बिठाना कंपलसरी हो चुका है, और इसकी आखिरी डेट थी 30 जून की। और जब तक जिन्होंने बिठाया वो तो सेफ है, लेकिन जिन लोगों ने अब तक नहीं बिठाया तो उनके ऊपर कार्रवाई होने वाली है और उनको फाइन भरना पड़ेगा। तो अब इसमें एक नया अपडेट आया है, अगर आपने HSRP नंबर प्लेट के लिए अपॉइंटमेंट ली है तो कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर आपने अपॉइंटमेंट भी नहीं ली और आप वैसे ही अपने शहर में गाड़ी चला रहे होगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और आपको अच्छा खासा फाइन भी पे करना पड़ेगा। और इसके लिए अब RTO एकदम एक्शन मोड पर आई है और रास्तों पर ही आपको नजर आएगी और आपकी गाड़ी की चेकिंग करेगी। तो भाई साहब, बहन जी, दादाजी, दादी जी, भैया जी, भाभी जी, सब लोग याद रखिएगा, अपने गाड़ियों पर HSRP नंबर प्लेट लगाना कंपलसरी है और इसकी अपॉइंटमेंट आप ऑनलाइन ले सकते हो RTO की वेबसाइट से, या फिर जो नंबर प्लेट बनाते हैं ना तो उनके पास आप जाकर आपका काम करवा सकते हो। एंड अपने पूरे जिले में तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा गाड़ियों पर अब तक नंबर प्लेट लगाई नहीं है, तो 1 लाख लोग है ये, तो जल्द से जल्द अपना काम करवाइए वरना फिर पकड़े जाओगे, फाइन पे करना पड़ेगा, फिर वही पूरी प्रोसेस है। और नंबर प्लेट याद से लगाइए एंड बाकी तो स्टे ट्यून्ड। पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6, कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।
1: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in। ऍडमिशन ओपन MGM युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी। प्रोग्राम्स BTech 4 इयर्स आफ्टर HSC, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, IoT, सायबर सिक्युरिटी इन्क्लुडिंग ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, सायबर सिक्युरिटी, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhajinagar.

0: लेट्स टॉक अबाउट हेल्दी लाइफ, क्योंकि हेल्दी रहोगे तो वेल्दी रहोगे। आप सुन रहे हो आरजे अदनान कौन एमजीएम 90.8 एफएम, और आज हम बात करेंगे फॉलिक एसिड फॉर प्रेग्नेंट वीमेन, यानी फॉलिक एसिड प्रेग्नेंट वीमेन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। और हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मंजूषा हिवरे मैम, एमजीएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट। गर्भवती महिलांसाठी फॉलिक एसिड इतके महत्वाचे का असते?
1: हाँ, विषय खरंच एकदम विशेष लक्षात ठेवण्यासारखा आहे। तसं प्रत्येक स्त्रीने गर्भधारणा होण्यासाठी आधीपासून गर्भधारणेच्या पहिल्या

0: लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
1: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515।

अगर आप यशराज फिल्म के स्पाई यूनिवर्स के फैंस हो और एक्शन देखना पसंद है तो आपके लिए अल्फा परफेक्ट ऑप्शन है वन टाइम वॉच। आरजे अदनान के साथ यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। अभी 3 दिन पहले अल्फा मूवी रिलीज हो गई थी, इसके थोड़े मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं और रिव्यू आ रहे हैं। क्रिटिक्स और ऑडियंस थोड़ा मिक्स हो चुके हैं एंड किसी का कहना है कि एक्शन ठीक है, किसी का कहना है कि यार बहुत ही बोर फिल्म लगी, और कोई तो कहता है कि यार वही हर बार की बॉलीवुड वाली कहानी, म्हणजे ती बोरिंग करणारी गोष्ट अशी लोकांना वाटली आहे। लोक ना तो एकदम स्ट्रॉंग स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन स्टोरी थोड़ी डगमगा गई है। अब इस फिल्म के अंदर अच्छा क्या लगा, आलिया भट्ट का एक्शन अवतार और इम्प्रेसिव है, शर्वरी की भी एक्टिंग और उसका जो एक्शन है वो बहुत बेहतरीन है, यानी कि आलिया और शर्वरी ने बहुत अच्छा काम किया है और प्रोडक्शन एंड विजुअल्स काफी ग्रैंड है और बहुत बेहतरीन है। और क्या वीक पॉइंट है इस फिल्म के अंदर, तो स्टोरी प्रेडिक्टेबल है और कहीं ना कहीं हॉलीवुड से मिलती जुलती है, और वही जो कहानी हम स्पाई यूनिवर्स में सुनते हैं ना या देखते हैं तो उस तरीके की एक कहानी है। इमोशनल कनेक्ट और स्क्रीन प्ले उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहा और स्पाई थ्रिलर होने के बाद भी सस्पेंस बहुत लिमिटेड है, वरना स्पाई सीरीज के अंदर कूट कूट कर भरा होता है। और इस फिल्म को गिरते गिरते संभाला था ऋतिक रोशन ने, जब उनकी एंट्री होती है तब थिएटर में सीटियों की आवाज आती है। वन टाइम वॉच ये फिल्म देखनी है तो आप देख सकते हो, ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए इस फिल्म से कि आपको बहुत कुछ एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। एंड रेटिंग मिली है इसको 5 में से 3 की। आपने अगर देखी होगी आपको कैसी लगी ये फिल्म जरा बताइए DMKG का इंस्टा पर RJ अदनान इस पेज पर एंड स्टे ट्यून्ड।

93.8 FM। किसी से बात कर रहे हो तो पहले कैसे लेटर लिखना पड़ते थे, एक वेटिंग लिस्ट में रुकना पड़ता था STD PCO के, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं। तो सोशल मीडिया के जमाने का फायदा उठाते हैं और हम सभी लोग ना तो 24/7 एक साथ कनेक्ट रह सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है RJ Adnan। आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ कहना हो, आपको दिल की बात शेयर करनी हो, #, आपको कोई नहीं सुन रहा हो, तो मेरी जान मैं हूँ आपको सुनने के लिए और आपके प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए। देखो मैं आपको जज नहीं करूंगा, लेकिन आपके दिल में जो बात हो, मन हल्का करना हो, तो आप झिझक मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। आपकी बातें मेरे दरमियान ही रहेंगी और वो कहीं और जाएंगी नहीं। बस मन हल्का होना बहुत जरूरी है। आज के वक्त में क्या है पता है क्या, सुनने वाले बहुत कम है। हमें बताना तो बहुत कुछ होता है, लेकिन सुनने वाला कोई मिलता ही नहीं है। आर्ट ऑफ लिसनिंग कहीं दिखाई नहीं देती। हर किसी को कुछ बताए तो वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन

हाँ जी, क्या हाल चाल? एकदम मस्त, बढ़िया। All is well. RJ and Anand ka morning show. Freshness light radio ka flow. On MGM 90.8 FM. RJ Adnan आपके साथ है on MGM 90.8 FM. बड़ा वक्त हो चुका है मेरा था कहने का, यानी कि RJ Adnan आपके साथ था, टाप टाटा बाय बाय कर रहा है, मैं तो चला अब अपनी गली। आज का शो आपको कैसा लगा? आई होप कि पसंद आया होगा, तो आपका फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा DMKG का इंस्टा पर, RJ Adnan इस इंस्टा पेज पर, या फिर व्हाट्सएप कीजिए 9359320080। इस नंबर पर आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कीजिएगा, फॉलोअर्स भी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। बाकी तो अपना ख्याल रखिएगा, आराम से गाड़ी चलाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए सुनते रहिए MGM 90.8 FM। मिलते हैं अगले अपने शो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

0: सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join NGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: Dinner ka mood ho ya family outing, taste aur MBS dono chahiye, to aa jaiye Meena's Kitchen. Yahan milenge delicious veg non-veg soup, tasty starters, malai tikka kebab, chicken tandoori, mutton bona aur Meena's special chicken biryani. Rooftop ambience, amazing taste aur full family vibes. Meena's Kitchen Family Garden Restaurant and Cheers Corner, Bombay Heights 9th floor, Bid Bypass Road, Chhatrapati Sambhajinagar. Tumcha career sathi yogya paryay shodtay Institute of Information and Communication Technology MGM University madhe milwa Future Ready program chi suvarna sandhi.
2: BTech in Computer Science and Engineering, BTech in Artificial Intelligence and Machine Learning, BTech in Information Technology, BTech in Data Science,
1: PG, MTech in AI and ML, MTech Data Science and Information Technology madhe PhD karnyachi sandhi. Kiwa nivda 12th nantar Diploma in Cyber Security and Digital Forensic.
2: Admissions open. For more information call on 94044-94299.
3: मतदारांनो एसआयआर 2026 अंतर्गत गृहभेटीपूर्वी voters.eci.gov.in किंवा ईसीआय नेट ॲपवर मागील एसआयआर मतदार यादीतील आपले किंवा आई वडिलांचे तपशील शोधा. नाव नमूद नसेल तर आवश्यक कागदपत्र तयार ठेवा. स्वाक्षरीयुक्त भरलेला गणना अर्ज बीएलओंना सादर करा आणि एक प्रत स्वतःजवळ ठेवा.
4: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
5: तो एमजीएम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, एमए इंग्लिश, एमए मराठी, एमए हिंदी, एमए उर्दू, एमए संस्कृत, पीजी डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
4: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763 67 9245 or 9665353515.

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है तो बात।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है एनजीएम 90.8 FM।
2: साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। वेल, उम्मीद है आपका सोमवार अब तक शानदार रहा होगा। दिन भर की भागदौड़ के बाद अब वक्त है थोड़ा रिलैक्स होने का, अपने लिए कुछ पल निकालने का। शाम की इस खूबसूरत फिजा में आपका बेहद ही स्वागत करती हूँ मैं हमारे खास शो में, जिसका नाम है ऑफकोर्स दिल से, क्योंकि बातें यह होती है सिर्फ दिल से। सोमवार अक्सर नई शुरुआत का दिन होता है, कोई नए गोल्स तय करता है, कोई नए सपने की ओर पहला कदम बढ़ाता है, और हो सकता है आज का दिन थोड़ा व्यस्त रहा हो। लेकिन याद रखिए, हर नई शुरुआत अपने साथ नए मौके भी लेकर आती है। तो अब काम और तनाव को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखिए, मुस्कुराइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। अगले दो घंटे तक हम लेकर आए हैं बेहतरीन गाने, दिलचस्प बातें और ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी, ताकि आपकी सोमवार की शाम और भी खास बन जाए। अगर आप कहीं सफर में हैं, ऑफिस से घर लौट रहे हैं या घर पर आराम कर रहे हैं, तो आवाज़ ज़रा बढ़ा दीजिए और इस सफ़र का हिस्सा बन जाइए। चलिए बिना किसी देर के इंतज़ार के अब करते हैं शुरुआत शानदार गाने की। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नए इरादों के साथ आपका स्वागत है। आज है सोमवार और हाँ, बहुत से लोग कहते हैं अरे फिर से मंडे आ गया है, लेकिन ज़रा सोचिए अगर हर सोमवार हमें एक नया मौका दे रहा है तो फिर इससे बेहतर शुरुआत और क्या ही हो सकती है। हर नया हफ्ता हमें याद दिलाता है कि जो पिछले हफ्ते नहीं कर पाए उसे इस हफ्ते पूरा किया जा सकता है। छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं, इसलिए खुद पर भरोसा रखिए और अपने हर दिन को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन की मेहनत एक दिन ज़रूर सफलता दिलाती है। इसलिए किसी और से अपनी तुलना मत कीजिए, बस कल वाले खुद से बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। अगर आज का दिन थोड़ा मुश्किल रहा है तो घबराइए मत, हर चुनौती हमें कुछ नया सीखने की सलाह देती है। मुस्कुराकर आगे बढ़िए और भरोसा रखिए कि आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। तो इस पूरे हफ्ते एक छोटी सी आदत अपनाइए, हर सुबह खुद से कहिए मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ और मैं ज़रूर करूँगी। यकीन मानिए, सोच बदलती है तो नज़रिया भी बदल जाता है और नज़रिया बदलता है तो ज़िंदगी बदलने में देर नहीं लगती। इसी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ शानदार गाने ओनली ऑन एमजी। पोनी फिल्म साथ है तो बात है रंगे।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आंशु मनीषा आपके साथ। उम्मीद है आपका सोमवार शानदार चल रहा होगा। अब ज़रा बात करते हैं उस चीज़ की जिसका इंतज़ार शाम होते होते लगभग हर किसी को रहता है, यानी शाम के टेस्टी स्नैक्स। पूरे दिन काम करने के बाद जब हल्की सी भूख लगती है तो चाय के साथ कुछ मज़ेदार खाने का मन भी करता है। किसी को गर्मा गर्म समोसे पसंद है, किसी को कुरकुरे पकौड़े, कई लोग सैंडविच, भेल या कॉर्न चाट जैसी हल्की फुल्की चीज़ें पसंद करते हैं। और अगर थोड़ा हेल्दी खाना हो तो स्प्राउट्स, चाट, मखाना और फ्रूट्स भी बढ़िया विकल्प हो सकते हैं। वैसे स्नैक्स का मज़ा सिर्फ खाने में नहीं बल्कि साथ बैठकर बातें करने में भी है। परिवार के साथ, दोस्तों के साथ या फिर ऑफिस की छोटी सी चाय ब्रेक, ये पल दिन भर की थकान को हल्का कर देते हैं। तो बताइए आपका मंडे इवनिंग स्नैक क्या है आज का? चाय के साथ समोसा, कॉफी के साथ सैंडविच या फिर कुछ और हेल्दी? जो भी हो उसे एंजॉय कीजिए और इस शाम को थोड़ा और स्वादिष्ट बनाइए। और अब इसी मजेदार मूड के साथ वक्त है एक शानदार गाने का। आप सुनते रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ बातें भी दिल से होती है और गाने भी आपके दिल के करीब बजते हैं। ओनली ऑन एमजी 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। अब बारी है एक ऐसे गाने की जो प्यार की एक बेचैनी और दिल की धड़कनों को बहुत खूबसूरती से बयां करता है। कभी कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जिसकी याद हर वक्त साथ रहती है, फिर दिन हो या रात काम में मन ही नहीं लगता और हर छोटी सी बात में उसी का ख्याल आने लगता है। यही एहसास इस गाने की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इस गाने में प्यार की वही मासूम सी बेचैनी है जब दिल सिर्फ एक ही इंसान के बारे में सोचता है, नींदें भी जैसे रुक जाती है और दिल को चैन भी नहीं मिलता। लेकिन यही तो सच्चे प्यार की सबसे प्यारी बात है। इसमें इंतज़ार भी होता है, मुस्कान भी होती है और ढेर सारी उम्मीदें भी होती है। अगर आपने भी कभी किसी को दिल से चाहा है तो यकीन मानिए इस गाने की फीलिंग्स आपको ज़रूर अपनी सी लगेगी। इसीलिए सारे टेंशन को कुछ देर के लिए भूल जाइए, दिल की आवाज सुनिए और इस खूबसूरत रोमांटिक सफर का आनंद लीजिए। तो पेश है प्यार की मीठी सी बेचैनी को बयां करता ये सदाबहार गाना, Only on MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।
1: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक, आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6, कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
2: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
4: Admission open MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Sidco, छत्रपति संभाजीनगर।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। सोमवार यानी नए हफ्ते की शुरुआत और साथ ही कामों की लंबी लिस्ट। सुबह से ही मीटिंग्स, फोन कॉल्स, ट्रैफिक, ऑफिस, कॉलेज या घर की जिम्मेदारी। ऐसे लगता है कि पूरा दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला। लेकिन इस बिजी शेड्यूल में इसके बीच एक बात याद रखिए, काम ज़रूरी है लेकिन खुद का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। दिन में कुछ मिनट अपने लिए निकालिए, एक कप चाय, थोड़ा सा गाना या बस दो पल सुकून के, मुस्कान के। ये छोटी छोटी बातें आपकी पूरी थकान कम कर सकती है। अगर आज का दिन आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा तो कोई बात नहीं, सोमवार सिर्फ शुरुआत है, पूरी कहानी तो अभी बाकी है। अभी पूरा हफ्ता आपके सामने है। हर नया दिन आपको खुद को बेहतर साबित करने का एक नया मौका देता है। तो काम का तनाव थोड़ा कम कीजिए, गहरी सांस लीजिए और इस शाम को थोड़ा हल्का बनाइए, क्योंकि जब मन अच्छा होता है तो काम भी अच्छे से होता है और हफ्ता भी शानदार गुजरता है। हम भी आपके साथ हैं बेहतरीन गानों और दिल से जुड़ी बातों के साथ, ताकि आपका ये बिजी मंडे थोड़ा आसान और थोड़ा मुस्कुराता हुआ बन जाए। तो कहीं मत जाइए, संगीत का सिलसिला जारी है, जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि आपकी शाम अभी और भी खूबसूरत होने वाली है। ओनली ऑन MG 90.8 FM, साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। अगर आप इस वक्त ऑफिस से घर लौट रहे हैं तो हो सकता है आप ट्रैफिक में फंसे हो, और सच कहे तो मंडे ट्रैफिक का अपना ही अलग अंदाज होता है। वीकेंड के बाद सड़कें फिर से गाड़ियों से भर जाती है, सिग्नल थोड़े लंबे लगने लगते हैं और मंजिल तक पहुँचने की जल्दी भी सबको होती है। लेकिन ऐसे समय में सबसे ज़रूरी चीज़ है सब्र, और कुछ मिनट पहले पहुंचने की जल्दबाजी कई बार बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए आराम से गाड़ी चलाइए, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए और अपनी सुरक्षा को सबसे पहले रखिए। अगर आप कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइए, अगर आप बाइक पर हैं तो हेलमेट हमेशा पहनिए, और सबसे ज़रूरी बात ड्राइव करते समय मोबाइल फ़ोन से दूरी बना के रखिए। आपकी एक छोटी सी सावधानी आपको और आपके अपनों को सुरक्षित रख सकती है। वैसे ट्रैफिक में फंसने का एक फ़ायदा भी है, यही वो समय है जब आप अपने पसंदीदा गाने सुन सकते हैं और थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं और दिन भर की थकान को पीछे छोड़ सकते हैं। तो मुस्कुराइए, सफ़र का मज़ा लीजिए और हमें अपना साथी बनाइए। अब इसी खूबसूरत शाम को और भी सुरीला बनाते हैं एक शानदार गाने के साथ। आप सुनते रहिए एम जी मनाड़ी पॉइंट एफ एम, साथ है तो बात है।

0: Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: Nairashya, Becheni, Zopichi Samasya, Bheeti, Chitchit, Ata Manasik Azar Lapoichi Nahit, Upchar Gya, Samadhan Shodha.
2: Dr. Amol Patrikar, Manas Upchar Vavesan Mukti Tadnya.
1: Satat Chichinta, Ati Vichar Karne, Bheeti Vatne, Dasti Basne, Bhasone, Ghabarne, Sonshe Karne, Shankayene, Chitchit Bana, Ekas Goshta Puna Puna Karne, Mantra Chale Pana, Vyasan Dita, Lahan Muran Madil, Vrudar Madil, Manasik Lakshane, Vaivahik Samasya, Ya Sarva Samasya, Anwar Upchar, Ani Samadhan. Samupadeshan Vyasan Mukti, Purusho, Mahila, Antar Rugna, Suvidha Uplabdha, Aazaz Bhet Gya.
2: Utkarsh Clinic, Harsul T Point, HP Petrol Pump, Shezari, Zalgaon Road, Chhatrapati Sambhajinagar, Antar Rugna Vibhag, Disha Hospital, Samupadeshan Counseling Center, Sant Tukaram Natyagrahacha Jawal, Chhatrapati Sambhajinagar. Contact on 888-99-2688.
1: तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी एमजीएम युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्यूचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी
3: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी बीटेक इन डेटा सायन्स
1: पीजी एमटेक इन एआय अँड एमएल एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये पीएचडी करण्याची संधी किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक
3: ऍडमिशन्स ओपन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404942
4: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग टेस्ट और एमबीएस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप टेस्टी स्टार्टर्स मलाई टिक्का कबाब चिकन तंदूरी मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी रूफटॉप एम्बियंस अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर बीड बाईपास रोड छत्रपति संभाजीनगर क्या आप इंग्लिश फ्रेंच जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं या फिर अरेबिक संस्कृत मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं
2: तो एमजीएम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है बीए ऑनर्स इन इंग्लिश एमए मराठी एमए हिंदी एमए उर्दू एमए संस्कृत पीजी डिप्लोमा इन अरेबिक डिप्लोमा प्रोग्राम्स क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश संस्कृत फ्रेंच जर्मन उर्दू जापानीज पर्शियन एंड ट्रांसलेशन
1: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763 67 9245 or 9665353515.

सुन रहे हैं एमजी मनाली पॉनी रिफम और मैं हूं आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। सोमवार सिर्फ एक नया दिन नहीं बल्कि पूरे हफ्ते की नई शुरुआत है, इसलिए अगर इस हफ्ते को बेहतर बनाना है तो शुरुआत एक अच्छे प्लान से कीजिए। ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी प्लानिंग हो, बस अपने इस हफ्ते के 3-4 सबसे ज़रूरी काम तय कर लीजिए। कौन सा काम पहले करना है, किससे मिलना है, क्या नया सीखना है या खुद के लिए थोड़ा समय निकालना है। जब चीज़ें साफ होती है तो हफ्ता भी आसान लगने लगता है। एक और छोटी सी बात, अपने लिए भी थोड़ा वक्त ज़रूर रखिए। सिर्फ काम ही नहीं, अच्छी नींद, थोड़ा एक्सरसाइज, परिवार के साथ कुछ पल और अपनी पसंदीदा गाना, ये भी बहुत ज़रूरी है। वीक प्लानिंग का हिस्सा बनना चाहिए ये भी, क्योंकि जब आप खुश और तरोताज़ा रहते हैं तो हर काम और बेहतर होता है। याद रखिए, परफेक्ट प्लान से ज़्यादा ज़रूरी है उस प्लान पर लगातार काम करना। रोज़ एक छोटा कदम भी आपको आपकी मंजिल के बहुत करीब ले जा सकता है। तो आज शाम कुछ मिनट निकालिए, अपने आने वाला हफ्ता प्लान कीजिए और खुद से एक वादा कीजिए कि इस बार हर दिन को पूरी मेहनत और पूरी मुस्कान के साथ जिएंगे। इसी पॉजिटिव सोच के साथ अब आगे बढ़ते हैं अगले शानदार गाने की ओर। आप सुनते रहिए एमजी मनाली पॉनी एफएम, साथ है तो बात है।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। उम्मीद है आज का दिन चाहे कितना भी बिजी रहा हो लेकिन हमारे साथ बिताए इन पलों ने आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाई होगी। संगीत, बातें और आपकी मौजूदगी यही तो हमारे इस सफर को खास बनाती है। अगर आज कुछ अधूरा रह गया है तो उसकी चिंता मत कीजिए, कल एक नया दिन है, नई शुरुआत है और नए मौके भी। बस अपने सपनों पर भरोसा रखिए और हर दिन कदम आगे बढ़ाते रहिए। आज घर पहुंचकर अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताइए, अच्छे से डिनर कीजिए, थोड़ा आराम कीजिए और रात को सुकून भरी नींद लीजिए, क्योंकि जब हम खुद का ख्याल रखते हैं तभी आने वाला दिन और बेहतर बनता है। हमारी यही कोशिश रहती है कि आपकी हर शाम संगीत और अच्छी बातों से भर जाए। आपका साथ, आपके मैसेज और आपका प्यार हमें हर दिन कुछ नया करने की प्रेरणा देता है। तो वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी के हर पल को दिल से जीते रहिए। फिलहाल मैं आपसे लेती हूँ इजाजत, फिर मिलेंगे इसी शो में इसी वक्त। तब तक के लिए गुड नाइट एंड ऑफ कोर्स एंजॉय योर वीक अहेड। स्टे ट्यून्ड टू एमजीएम 90.8 एफएम साथ ही दोबारा।
1: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी एमजीएम पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। एमजीएम क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। एमजीएम पेट केअर।
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: एमजीएम विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
5: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा एमजीएम कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
6: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
7: ऍडमिशन ओपन एमजीएम युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी। प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर एचएससी, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, आयओटी, सायबर सिक्युरिटी इन्क्लुडिंग ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, कम्प्युटर Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus, N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhajinagar.

अगर आपको आपकी जान प्यारी है तो गाड़ी आहिस्ता से चलाइएगा, क्योंकि अपने रास्ते इतने खूबसूरत है, क्या ही बोले यार, माशाल्लाह। यू आर लिस्निंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है और मौसम मस्ताना है और गाड़ी स्लिप होता ना काय मनवाता। देखो यार, बरसात का मौसम है, सब तरफ ना तो बरसात आ रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है, लेकिन सड़कें अपनी बहुत गीली गीली आपको नजर आ रही है। स्पेशली अगर आप अपने जालना रोड के ऊपर जाओगे ना, मोंडा नाका ब्रिज के नीचे से आप अगर गुजर रहे हो तो वहाँ का रास्ते की हालत अपनी नजरों के सामने है। एक साइड का रास्ता पूरा खराब हो चुका है एंड उसके ऊपर पैच वर्क किया गया था, लेकिन इतना खराब पैच वर्क किया है कि गाड़ी चलाते वक्त इस बरसात के मौसम में अक्सर दिन में से 4 से 5 टू व्हीलर्स वहाँ पर स्लिप हो ही रहे है। और इसी के साथ क्रांति चौक ब्रिज के नीचे, जैसे हम ना तो दूध डेयरी से होते हुए क्रांति चौक जाते हैं ना, तो बीच में एक बड़ा गड्ढा आपको नजर आएगा, तो वहाँ से गुजरते हुए गाड़ी आहिस्ता से चलाइएगा। अगर उस गड्ढे में आपकी गाड़ी चली गई तो फंस जाओगे और आप भी गिर जाओगे। और जैसे ही ना आप क्रांति चौक के एग्जैक्टली नीचे आते हो ना, जहाँ पर सिग्नल होता है, वहाँ पर भी गड्ढे हो गए थे, तो प्रशासन ने क्या किया, उसके ऊपर खड़ी होती ना बारीक बारीक खड़ी, ज्याला काय म्हणतात चुना खड़ी काय तरी असं म्हणतात, तर ती टाकलेली आणि ती खडी पावसामुळे पूर्ण निघाली आहे आणि पूर्ण रस्त्यावर खडी पसरलेली आहे आणि त्यामुळे सुद्धा गाडी स्लिप होण्याचे प्रमाण वाढत आहे और इस नुकसान आम आदमी का होता है। तो बी सेफ बी केयरफुल, क्योंकि प्रशासन कब ये काम ठीक करवाएगा और कब रास्ते ठीक हो गए ये तो मुझे भी नहीं पता, और प्रशासन को पता होता तो वो भी बताते, वरना इतने बड़े बड़े खड्डे अपने यानी कि गड्ढे अपने शहर में हो चुके हैं, वो गड्ढे नहीं है भाई। एक बात याद रखिएगा, वो है स्पीड ब्रेकर आपकी गाड़ी की स्पीड कम करने के लिए। अगर गड्ढे होते वो प्रशासन की नजरों से तो वो गड्ढे भर दिए होते, लेकिन गड्ढे नहीं है ना, स्पीड ब्रेकर है, ऐसा हम समझ सकते हैं दिल के तसल्ली के लिए। गाड़ी सेफ तरीके से चलाइए, आराम से चलाइए और सुनते रहिए RJ अदनान के साथ।

अगर आप यशराज फिल्म के स्पाई यूनिवर्स के फैंस हो और एक्शन देखना पसंद है तो आपके लिए अल्फा परफेक्ट ऑप्शन है वन टाइम वॉच। आरजे अदनान के साथ यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। अभी 3 दिन पहले अल्फा मूवी रिलीज हो गई थी, इसके थोड़े मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं और रिव्यू आ रहे हैं। क्रिटिक्स और ऑडियंस थोड़ा मिक्स हो चुके हैं एंड किसी का कहना है कि एक्शन ठीक है, किसी का कहना है कि यार बहुत ही बोर फिल्म लगी, और कोई तो कहता है कि यार वही हर बार की बॉलीवुड वाली कहानी, मुझे ती बोरिंग करनारी गोष्ट अशी लोकांना वाटली आहे। लोग ना तो एकदम स्ट्रॉन्ग स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन स्टोरी थोड़ी डगमगा गई है। अब इस फिल्म के अंदर अच्छा क्या लगा, आलिया भट्ट का एक्शन अवतार और इम्प्रेसिव है, शर्वरी की भी एक्टिंग और उसका जो एक्शन है वो बहुत बेहतरीन है, यानी कि आलिया और शर्वरी ने बहुत अच्छा काम किया है और प्रोडक्शन एंड विजुअल्स काफी ग्रैंड है और बहुत बेहतरीन है। और क्या वीक पॉइंट है इस फिल्म के अंदर, तो स्टोरी प्रेडिक्टेबल है और कहीं ना कहीं हॉलीवुड से मिलती जुलती है, और वही जो कहानी हम स्पाई यूनिवर्स में सुनते हैं ना या देखते हैं तो उस तरीके की एक कहानी है। इमोशनल कनेक्ट और स्क्रीन प्ले उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहा और स्पाई थ्रिलर होने के बाद भी सस्पेंस बहुत लिमिटेड है, वरना स्पाई सीरीज के अंदर कूट कूट कर भरा होता है। और इस फिल्म को गिरते गिरते संभाला था ऋतिक रोशन ने, जब उनकी एंट्री होती है तब थिएटर में सीटियों की आवाज आती है। वन टाइम वॉच ये फिल्म देखनी है तो आप देख सकते हो, ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए इस फिल्म से कि आपको बहुत कुछ एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। एंड रेटिंग मिली है इसको 5 में से 3 की। आपने अगर देखी होगी आपको कैसी लगी ये फिल्म जरा बताइए DM के जगह इंस्टा पर RJ Adnan इस पेज पर। एंड स्टे ट्यून्ड।

0: आपकी टू व्हीलर और फोर व्हीलर पर नंबर प्लेट कौन सी है, नई वाली या पुरानी वाली, याद तो है ना कुछ? यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, आरजी अदनान आपके साथ है। और एक नया रूल आया है कि अब हर एक गाड़ियों पर ना तो HSRP नंबर प्लेट बिठाना कंपलसरी हो चुका है, और इसकी आखिरी डेट थी 30 जून की। और जब तक जिन्होंने बिठाया वो तो सेफ है, लेकिन जिन लोगों ने अब तक नहीं बिठाया तो उनके ऊपर कार्रवाई होने वाली है और उनको फाइन भरना पड़ेगा। तो अब इसमें एक नया अपडेट आया है, अगर आपने HSRP नंबर प्लेट के लिए अपॉइंटमेंट ली है तो कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर आपने अपॉइंटमेंट भी नहीं ली और आप वैसे ही अपने शहर में गाड़ी चला रहे होगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और आपको अच्छा खासा फाइन भी पे करना पड़ेगा। और इसके लिए अब RTO एकदम एक्शन मोड पर आई है और रास्तों पर ही आपको नजर आएगी और आपकी गाड़ी की चेकिंग करेगी। तो भाई साहब, बहन जी, दादाजी, दादी जी, भैया जी, भाभी जी, सब लोग याद रखिएगा, अपने गाड़ियों पर HSRP नंबर प्लेट लगाना कंपलसरी है। और इसकी अपॉइंटमेंट आप ऑनलाइन ले सकते हो RTO की वेबसाइट से, या फिर जो नंबर प्लेट बनाते हैं ना तो उनके पास आप जाकर आपका काम करवा सकते हो। एंड अपने पूरे जिले में तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा गाड़ियों पर अब तक नंबर प्लेट लगाई नहीं है, तो 1 लाख लोग है ये, तो जल्द से जल्द अपना काम करवाइए, वरना फिर पकड़े जाओगे, फाइन पे करना पड़ेगा, फिर वही पूरी प्रोसेस है। और नंबर प्लेट याद से लगाइए, एंड बाकी तो स्टे ट्यून्ड।
1: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6, कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश निश्चित करा।
2: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
4: ऍडमिशन ओपन MGM युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी। प्रोग्राम्स BTech 4 इयर्स आफ्टर HSC, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, IoT, सायबर सिक्युरिटी इन्क्लुडिंग ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, सायबर सिक्युरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग, VLSI डिझाईन अँड टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग, रोबोटिक्स अँड ऑटोमेशन। फॉर ऍडमिशन विजिट mgmu.ac.in और कॉन्टॅक्ट 9371714253 और विजिट MGM कॅम्पस, N6 सिडको, छत्रपती संभाजीनगर।

0: नमस्कार, छत्रपती संभाजीनगर.
1: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8 FM.
2: अरे देख रहे हैं?
3: तो देखने दो.
2: जल भी रहे हैं?
3: अरे तो जलने दो.
2: खुली सड़क है बाबा.
3: तो क्या हुआ भाई?
2: हाँ तो हट जाए.

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात है।